बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

27 जून आज का दिन बेहद खास। आज है आरडी बर्मन का जन्म जयंती। इस बेहद खास मौके पर आज हम आपको आज के नॉनस्टॉप गपशप में सुनवाएंगे उनके कुछ बेहतरीन गीत। कुछ में उन्होंने आवाज दी तो कुछ में सुर, और ले चलेंगे एक सुहानी सफर पर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। मैं शुद्धिश्मिता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो, दिल से दिल तक पर सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को। 10:05 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, और रुक करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। और आज जो है हम सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, म्यूजिकल मॉर्निंग भी बोलेंगे कोलकाता, क्योंकि आज के दिन अभी के कार्यक्रम में मैं सुचेष्मिता आप सबके साथ बातें करूंगी आर डी बर्मन की, जो कि जो है अपने आप में एक म्यूजिक है, एक हिस्ट्री है, म्यूजिकल हिस्ट्री है। दोस्तों आज का दिन तारीख जो है 27 जून कैलेंडर का यह पन्ना, आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं बल्कि भारतीय संगीत के इतिहास का वो पन्ना है जिसने हमारी रगों में जो है संगीत का जादू खोल दिया। जी हाँ दोस्तों, आज शुरू के बेताज बादशाह हम सब के चहेते राहुल देव बर्मन आर डी बर्मन यानी पंचम दखा, उनकी जन्म जयंती है और आज के दिन हम उन्हें उन्हीं के गानों के साथ याद करेंगे।

मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों, आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है। बोलिए क्या?

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू, फरहा, रांझा तो है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

पंचम दा यानी एडी बर्मन, एक ऐसा जादूगर जिसने अपनी आवाज से, अपने सुरों से हमारे जीवन में, हमारे रगों में संगीत खोला हो, जिसने अपनी उंगलियों से सातों सुरों को ऐसे नचाया कि आज 3 दशक बाद भी उनकी धुनें हमारे कानों में मिश्री खोलती हैं जैसे। पंचमदा का जादुई सफर कहते हैं, पंचमदा जो है जब रोते थे तो पंचम सुर में ध्वनि निकलती थी, इसलिए महान अभिनेता अशोक कुमार ने उनका नाम पंचम रख दिया। पंचमदा का सिर्फ संगीत नहीं बनाया, उन्होंने संगीत के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। सोचिए, कंघी से रगड़कर संगीत बनाना हो तो सोडा वाटर की बोतल पे पॉप की आवाज निकाली और धुन तैयार हो गया, या फिर कप और चम्मच से एक दूसरे से टकरा कर की म्यूजिक बनी जिसे सुनकर जैसे कानों में मिश्री घुलती हो। ये पागलपन, ये दीवानगी सिर्फ और सिर्फ पंचम दा का ही हो सकता है, वही कर सकते हैं। किशोर कुमार की आवाज, आशा भोसले की आवाज की खनक और पंचम दा का म्यूजिक, ये तो क्या ही कहने थे। और उनके सभी गाने एक पे एक थे, आप कोई ऐसा गाना नहीं चुन सकते कि नहीं ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा, वो सभी गानों में जैसे जान फूंक देते थे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

5:45 स्टूडियो की घड़ी में वक्त 107 AIR FM रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ बातें हो रही हैं पंचमदा की आरडी बर्मन की, जिसने भारतीय सिनेमा का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी म्यूजिक उफ उनके तो क्या ही कहने। और देखिए आजकल जो है मौसम भी हो रहा है बारिश वाला, और जब बारिश की बात हो तो रिम झिम गिरे बारिश बूंदे, ये गेंद कैसे ना रहे, कैसे ना बचे, कैसे आप तक ना पहुंचाऊं इस गीत को मैं। वैसे तो आर डी बर्मन के गाने हर मौसम में अपने जादू को बिखेरते हैं, हर वक्त हमारे दिल के करीब होते हैं, चाहे वो सैड सॉन्ग हो और या फिर पार्टी सॉन्ग हो, वो हर मौके पर अपने जो है संगीत से हम सबका दिल जीत लेते हैं। और ऐसे में उनकी गानों को याद करते हुए ये गीत सुन लेते हैं।

और 10:50 और वक्त हो गया है कि अब मैं आपको कुछ नुस्खे बता दूं। तो जैसे भाई आज जो है पंचमता का यानी कि आर डी बर्मन का जन्मदिन है, तो हर सर तरफ जो है सुर और ताल की बातें हो रही हैं। मैं भी आपको जो है प्यारे प्यारे नगमे सुना रही हूँ। तो श्रोताओं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बाथरूम सिंगर से लेकर स्टेज सिंगर तक बनना चाहते हैं, या फिर रोज़ अपनी आवाज़ को थोड़ा सा और शार्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की एक चुटके नुस्खे में, अगर आप रोज सुबह उठकर रियाज करते हैं तो इस बारिश के मौसम में गला खराब होने की थोड़ी सी संभावना होती है, गला थोड़ा बैठ जाता है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप हमारी बातें सुन सकते हैं, हमारे साथ रेडियो में जुड़ के गाने सुन सकते हैं। नहीं, मजाक कर रही हूँ। आप जो कर सकते हैं वो ये कि मुलेठी के जादू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रियाज करते समय गला जल्दी थक जाता है या आवाज़ भारी हो जाती है, तो आप जो है मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए, इसे ट्रॉफी की तरह रखकर मुँह में जो है धीरे धीरे चूसते रहिए। इसे जो है गले में सूजन दूर करता है और आवाज़ जो है उसमें खनक लाती है, मिठास आता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो काली मिर्च और मिश्री का तड़का भी लगा सकते हैं अपने गले में। कफ या खिंचन हो रही है, खिचकिच हो रही है, तो बस पीसी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री को आधा चम्मच शुद्ध घी के साथ लेकर पेस्ट बनाकर रात को सोने से पहले इसे ले लें, ताकि इससे जो है इसके बाद बिल्कुल पानी ना पिए और सो जाए। बस सुबह जब उठेंगे तो आपका गला साफ होगा। नमक हल्दी के गरारे भी कर सकते हैं। गायन सीखने वालों के लिए गुनगुने पानी में एक चुटकी नमक और हल्दी डालकर गरारे करना भी जो है बेहतरीन साबित होता है। अगर आप चाहें तो आप इन नुस्खों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूर फ़ायदा पा सकते हैं। इसी के साथ रुक करेंगे अगले गीत की ओर। आर डी बर्मन की ही कंपोज किया हुआ अगला गीत आप सबके लिए।

0: इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जाऊंगी आपको, सुनते रहिए साथ रहिए 107.9 FM ड्रेन बोदल से दिल तक। में सुन रहे थे आप कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, मैं सुजिश्मिता आप सबके साथ, और आज हमने साथ में सुने आंटी बर्मन के कंपोज किए हुए उनकी आवाज़ से हुए गीतों को उनके जन्म जयंती पर, और याद किया उन्हें, है ना। आप सबको टाटा एंड बाय बाय, लेकिन इस वादे के साथ कि ऐसे ही किसी कार्यक्रम में दोबारा आप सबसे जरूर मिलूंगी, आप सबसे बेहतर और भी ऐसे ही किसी विषय पर बात करूंगी, और जो है ढेर सारे गीत भी साथ लाऊंगी।
1: जब

0: बाप रे, ये तो इंद्रपुरी पंडित जी।
1: इंद्रपुरी बोते वही देखो, देव नारायण बाबू भाई पो पूरा निकम्मा
2: संगे रोबोत दुटी।

0: আমাকে খুব জলদি কিছু জিনিস পাঠাতে হবে, কোন সুপার ফাস্ট অপশন আছে নাকি?
1: আরে ভাই একদম, ইন্ডিয়া পোস্ট নিয়ে এসেছে 24 স্পিড পোস্ট, মানে পরের দিনই নিশ্চিত ডেলিভারি।
0: তাই নাকি? মানে দরকারি ডকুমেন্ট থেকে পার্সেল বা যে কোনো জরুরি জিনিস সবকিছু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে?
1: আরে হ্যাঁ ভাই, রয়েছে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, পকেট ফ্রেন্ডলি রেট, আর সবচেয়ে জরুরি ওটিপি ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি। শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
2: বিষয়টা জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in।
3: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 3:03 पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
4: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर।
3: जी हाँ, तीन का तड़का है प्रोग्राम का नाम, और जहाँ होती है बॉलीवुड की हॉट हॉट खबरें, और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस रिव्यूज भी, और साथ ही साथ जबरदस्त गाने भी हम सुनते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने से, साचेत टंडन की आवाज़ में।

तो चलिए दोस्तों, इसी प्यारे से गाने के साथ तीन कदर के पहले तड़के की ओर चलते हैं और जान लेते हैं आज के कुछ बॉक्स ऑफिस रिव्यूज। कॉकटेल 2 के बारे में बात करते हैं। कॉकटेल 2 ने दूसरे हफ्ते में भी दिखाई दमदार पकड़ और 8 दिनों में 74.75 यानी कि

0: साथ 5 करोड़ की कमाई कर ली। शाहिद कपूर, कृति शैनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी इस फिल्म ने 8वें दिन भारत में कुल 74.45 करोड़ नेट का कारोबार कर लिया और अब 75 करोड़ के क्लब में बस एक कदम दूर है। फिल्म ने पहले वीकेंड में शानदार शुरुआत की थी, हालांकि वीकेंड्स में कमाई में सामान्य गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दर्शकों के साथ अब भी बना हुआ है ये इसकी कहानी। यही वजह है कि फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 114 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब फिल्म के सामने नई चुनौती है, वेलकम टू द जंगल रिलीज हो चुकी है। इसके बावजूद भी ट्रेंड एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि यदि वीकेंड में कॉकटेल 2 अपनी पकड़ बनाए रखती है तो इसका बॉक्स ऑफिस पर सफर और मजबूत भी हो सकता है। इसी बात पर चलिए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं दूसरा गाना, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक चलिए ले लेते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: इसी के साथ चलिए सुनते हैं हमारा दूसरा गाना फिल्म शमिताभ से।

इस प्यारे से गाने के बाद चलिए सुनते हैं अब दूसरी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वेलकम टू द जंगल। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी एडवेंचर फिल्म वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है दोस्तों। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में 22 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया जबकि ओवरसीज मार्केट में 6.5 करोड़ की कमाई हो चुकी है। इस तरह फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 30 करोड़ रहा। करीब 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में निर्देशन अहमद खान ने किया। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन समेत 36 से ज्यादा कलाकार नजर आ रहे हैं। ये लोकप्रिय वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। फिल्म की कहानी 2000 करोड़ रुपए की फ्लॉप फिल्म बनाने की अनोखी और मजेदार कोशिश के इर्द गिर्द घूमती है। कॉमेडी और बड़े स्टार कास्ट की वजह से दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। पहले दिन की कमाई के साथ ही ये वेलकम फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म भी बन गई है और अगर एक्सपर्ट्स की मानिए तो अगर ये फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही बनी रही तो इसकी यही रफ्तार तो वीकेंड तक फिल्म आसानी से 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। फिलहाल वीकेंड आ चुका है तो देखते हैं कि क्या हाल चाल रहता है बॉक्स ऑफिस पर वेलकम टू द जंगल का।

तो चलिए बॉलीवुड के खबरों को से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मॉलीवुड टाइम्स की बात लेकर आए हैं आप। यहाँ साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्म मॉलीवुड टाइम्स हम OTT पर दस्तक देने जा रहे हैं। 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई होने हुई ये मलयालम फिल्म 3 जुलाई 2026 से अब OTT पर स्ट्रीम होने वाली है। फिल्म की कहानी विनीत माधवन नाम के एक युवा फिल्म मेकर के इर्द गिर्द घूमती है जो मलयालम सिनेमा में हॉरर फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहता है। इस सफर में उसे इंडस्ट्री की राजनीति, संघर्ष और कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। अभिनव सुंदर नायक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नेस्लीन शराफ, यूधीन, विनीत श्रीनिवासन, गोपिका रमेश और प्रशांत अलेक्जेंडर समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। तो अगर आप डार्क साइकोलॉजिकल कॉमेडी फिल्म के फैन हैं तो फिर रेडी रहिएगा भाई, 3 जुलाई 2026 को मॉलीवुड टाइम्स आ रही है OTT पर। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं बादशाह और सुनिधि चौहान की आवाज़ में उनके एल्बम से आशिक आवारा।

चलिए दोस्तों, एक और जबरदस्त आने वाली फिल्म की अपडेट आपको दे ही देते हैं। जी हाँ, श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म में ईथा का टीजर सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद मेकर्स ने इसे आधिकारिक तौर पर रिलीज कर ही दिया। टीजर में श्रद्धा कपूर मराठी लोक कला तमाशा और लावणी की दिग्गज कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के किरदार में नजर आने वाली है। टीजर में श्रद्धा का दमदार लुक और शानदार अभिनय दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। फिल्म की भावनात्मक कहानी और दमदार प्रस्तुति ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी है और कहीं ना कहीं इसका कंपटीशन फिल्म अल्फा के साथ भी होने वाला है। तो आने वाले समय में भाई जुलाई का समय और अगस्त का समय काफी दिलचस्प रहने वाला है बॉलीवुड में। इंतजार रहेगा हम सभी को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और फिल्म स्त्री से ही सुन लेते हैं मीका सिंह और सचिन जिगर की आवाज में अगला गाना।

0: अब चलिए दोस्तों, चाहे तीन का तड़का के जो का ये सफर है उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाते हुए सीधे चलते हैं परियोजना प्रस्तुति की ओर, क्योंकि जान लेते हैं कि भाई कौन कौन सी नई नई परियोजनाएं आ रही है हमारे खुद के बेनिफिट के लिए। तो हमारे लिए अब चलिए परियोजना प्रस्तुति का समय हो चला है।
1: 107 FM Rainbow Presents, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: नमस्कार दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के समावेशी विकास की दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास के समान अवसर मिले। इसके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बेहतर स्कूल, आंगनवाड़ी, छात्रवृत्ति, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा भी दिया जाता है। साथ ही सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ाने, आवास और आधारभूत सुविधाओं के विकास और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ये कार्यक्रम केवल योजनाएं बनाने का तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी की भी व्यवस्था करता है। जब समाज का हर नागरिक शिक्षा, सम्मान और अवसर के साथ आगे बढ़ता है, तभी देश का विकास भी संतुलित और मजबूत होता है। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम इसी सोच को साकार करने का प्रयास है। फिलहाल इसी संदेश के साथ परियोजना प्रस्तुति आज बस फिलहाल यहीं तक।
1: 107 FM Rainbow Presents, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: tingkat kerja, tingkat kerja, tingkat kerja. Baru 7 FM Rainbow Pad, tingkat kerja, tingkat kerja, tingkat kerja. Baru 7 FM Rainbow Pad, Rainbow Pad.
1: दीन कदर का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परियोजना प्रस्तुति के तुरंत बाद। अब चलिए अब आगे बॉलीवुड के और भी अपडेट्स लेंगे, पर उससे पहले चलिए ना सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना खिल सचदेव और मुंशील गुजराल की आवाज़ में।

चलिए अब चलते हैं अगले तड़के की ओर। बॉलीवुड की एक आइकॉनिक जोड़ी दोस्तों 25 साल बाद फिर से साथ आने जा रही है। दिल चाहता है के बाद अब सैफ अली खान और फरहान अख्तर एक नई फिल्म के लिए हाथ मिलाने वाले हैं। खबरों के मुताबिक एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म एक इंटेंस थ्रिलर होगी जिसमें सस्पेंस, ड्रामा, नैतिक दुविधाएं और सामाजिक मुद्दों का दिलचस्प मेल भी देखने को मिलेगा। फिल्म में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में निभाएंगे जबकि फरहान अख्तर इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म का स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और निर्देशक के नाम का भी खुलासा नहीं किया गया है और लीड एक्ट्रेस की तलाश भी जारी है। उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर तक शुरू हो सकती है। साल 2001 में रिलीज हुई दिल चाहता है ने दोस्ती और रिश्तों को नए अंदाज में बड़े पर्दे पर पेश कर बॉलीवुड में एक नई लहर पैदा कर दी थी। अब साल 25 साल बाद सैफ और फरहान का ये रीयूनियन फैंस के लिए किस ट्रीट से कम नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो ये बहुप्रतीक्षित फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। स्टूडियो की घड़ी में 3:38 हो चुके हैं और बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं दो बैक टू बैक गाने। जारा खान और अनुराधा पौरवाल की आवाज़ में शुभ मंगल ज़्यादा सावधान से पहला गाना और जारा खान और देव नेगी की आवाज़ से में ही सत्यजीत सत्यमेव जयते 2 से हमारा बैक टू बैक दूसरा गाना।

दोस्तों, मनोरंजन जगत की अगर बात करें और संगीत के जादूगर की अगर बात करें तो फिर आर डी बर्मन का नाम सबसे पहले आता है। आज हिंदी फिल्मी संगीत के जादूगर महान संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा की जयंती है। 27 जून 1939 को जन्मे आर डी बर्मन ने अपने अनोखे संगीत और प्रयोग धर्मी अंदाज से बॉलीवुड को ऐसी धुनें दी जो आज भी हर पीढ़ी की पसंद बनी हुई है। चुरा लिया है तुमने ओ दिल को, ओ मेरे दिल के चैन, दम मारो दम महबूबा महबूबा, और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, जैसे सदाबहार गीत उनकी बेमिसाल प्रतिभा की पहचान है। भारतीय संगीत में पश्चिमी वाद्य यंत्रों और नई ध्वनियों का बेहतरीन मेल कर उन्होंने फिल्म संगीत को एक नई दिशा दी। आज उनकी जयंती के अवसर पर संगीत प्रेमी और फिल्म जगत उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंचम दा का संगीत सिर्फ धुन नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की अमूल्य विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को भी यूं ही सुरों का जादू सुनाती रहेगी। तो हम भी क्यों ना इस सुरों की जादूगर को याद करते हैं और तीन का तड़का में देते हैं उनको श्रद्धांजलि थोड़े नए अंदाज में।

चलिए चलते चलते दोस्तों हम करीबन आखिरी तड़के की ओर पहुंच चुके हैं भाई। इसके बाद छोटे मोटे तड़के हैं और फिलहाल चलिए बताते हैं आपको बॉलीवुड की खबर नहीं बल्कि हमारे विदेशी एक फिल्म की खबर। एक तुर्की फिल्म है, तुर्की की जो सुपरहिट ड्रामा अरफ्ता के कलाकार इन दिनों भारतीय रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल भारत से मिले खास तोहफे ने तुर्की स्टार्स का दिल जीत लिया। सीरीज में एतेश करहान और क्या करदार निभाने वाले एमिन गुनेक को खूबसूरत शेरवानी गिफ्ट की गई, जबकि मरकन की भूमिका निभाने वाली इलू टेमिरसी को लाल रंग की पारंपरिक साड़ी भेंट की गई। दोनों कलाकारों की खुशी और उत्साह ने भारतीय फैंस का दिल छू लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी शो के कलाकार कागरी बायलन और इले कराटास ने, जिन्होंने बॉलीवुड के आइकॉनिक गाने बोली चूड़ियां पर शानदार डांस कर इंटरनेट पर धूम मचा दी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारतीय दर्शक कमेंट्स में उनके साथ उनके इस देसी अंदाज की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। रफ्ता की लोकप्रियता अब सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहेगी। तुर्की, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी और स्पेनिश प्लेटफॉर्म्स पर शो के 25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड से जुड़ा ये नया कनेक्शन भी फैंस के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड का जादू सरहदों से बहुत आगे निकल चुका है। सीरी की घड़ी भी समय दिखा रही है कि अब 3:52 होने ही वाले हैं। अब आगे बढ़ते हुए चलिए सुन लेते हैं अगला जबरदस्त गाना बादशाह और आसागल की आवाज में मर्सी। उसके बाद फिर छोटे छोटे कुछ और खबरों के साथ कार्यक्रम को हम रैप अप करेंगे।

दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर एक बार फिर निर्माता की भूमिका में लौट आए हैं। खास बात यह है कि करीब 26 साल बाद उन्होंने नई बंगाली फिल्म के निर्माण की घोषणा की है। फिल्म का नाम है शुरू थे के शुरू, जिसमें राहुल बोस, पाओली और टोटा रॉय चौधरी जैसे कलाकार नजर आएंगे। अनुपम खेर ने फिल्म की घोषणा के दौरान कहा कि इस कहानी ने उन्हें बेहद प्रभावित किया और इसी वजह से उन्होंने इतने लंबे समय बाद फिर से बंगाली सिनेमा में बतौर निर्माता वापसी करने का फैसला किया है। उनका मानना है कि अच्छी कहानियां किसी एक भाषा की नहीं होती बल्कि हर दर्शक तक पहुंचनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में अनुपम खेर का योगदान 4 दशक से भी ज्यादा रहा है। अभिनय के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया। अब उनकी ये नई पहल बंगाली सिनेमा के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी और दर्शकों को इससे काफी उम्मीदें भी हैं। और इसी के साथ 3 का तड़का का आज का अंक भी यही समाप्त होने को आया। स्टूडियो की घड़ी में समय दिखा रहा है कि अब 3:56 होने वाले हैं, कुछ ही सेकंड बाकी है। तो जाते जाते एक और बहुत ही प्यारा सा गाना, चलिए हर्षित सक्सेना की आवाज में हम सुन लेंगे मर्डर 2 से, जी हाँ, हाले दिल। और उसके बाद वापस मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द 100.1 FM गोल्ड पर, लेकर स्पेशल आज प्रोग्राम चायन क्लासिक्स में याद करेंगे आरडी बर्मन को। वहाँ पे ढेर सारे रिक्वेस्ट आने चाहिए, बस यही दरख्वास्त है आपसे कि उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके बारे में बातें करेंगे और उनके ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशंस जो है, गाने जो है वो हम सुनेंगे। उसके बाद फिर छाया लोक पर तो वापस मुलाकात होगी ही। फिलहाल के लिए चलिए हर्षित सक्सेना को आपके लिए छोड़े जाती हूँ और मिलती हूँ वापस दूसरे स्टूडियो में FM गोल पर। तब तक के लिए बने रहिए 107 FM रेनबो है ये, थोड़ी ही देर में अगला प्रोग्राम।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: नमस्कार दोस्तों, 107 FM रेनबो पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर छायालोक। और आज है सैटरडे, शनिवार का दिन, यानी कि समय है
0: जाने अनजाने।
1: समय है जाने अनजाने का। कहते हैं फिल्मों का जादू सिर्फ पर्दे पर नहीं चलता, उसके पीछे भी एक पूरी दुनिया होती है। ऐसी दुनिया जहां कैमरे बंद होने के बाद भी कहानियां जन्म लेती है। कोई कहता है ये रोल पहले किसी और को मिलने वाला था, कोई दावा करता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया, और फिर देखते ही देखते एक छोटी सी बात बन जाती है फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह। और मजे की बात क्या है पता है? मजे की बात यह है कि इनमें से कुछ बातें पूरी तरह सच निकलती है, कुछ आधी सच और आधी कल्पना, और कुछ ऐसी होती है जिन्हें सालों तक लोग सच मानते रहते हैं जबकि उनके पीछे कोई ठोस सबूत बिल्कुल नहीं होता। तो आज जाने अनजाने में सिर्फ फिल्मों का सफर नहीं है बल्कि उन किस्सों का सफर है जिन्हें आपने दोस्तों की महफिलों में, सोशल मीडिया पर, मैगजीनों में या पुराने फिल्मी दीवानों की जुबान से

जरूर सोना था। लेकिन आज फैसला होगा, जो बात सामने आएगी क्या वो अफवाह निकलेगी या सच्चाई। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले गाने से उसके बाद सुनेंगे ऐसी कौन सी अफवाहें चली फिल्मी दुनिया में और उनकी पीछे की सच्चाई क्या थी।

अब जब फिल्मी दुनिया के अफवाहों की बातें हो रही हैं, कोई सच्चाई नहीं, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए मेरा सवाल यही होगा कि अगर आपको सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले अपने किसी पसंदीदा फिल्मी स्टार से, तो वो सवाल क्या होगा? एक बार फिर से मैं आपका जो सवाल है मैं बताती हूँ आपको, कि अगर आपको सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले अपने किसी पसंदीदा फिल्मी स्टार से, तो वो फिल्मी स्टार कौन होगा और क्या सवाल होगा, कौन सा सवाल आप पूछना चाहेंगे उनसे? तो चलिए, पहली अफवाह जो है, पहली जो झूठ है जो फिल्मी दुनिया में बहुत हंगामा मचाया था, ऐसे एक अफवाह, एक से एक झूठ से शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आज भारतीय सिनेमा की सबसे पहचानने योग्य आवाज किसकी है, शायद बहुत से लोगों का जवाब होगा अमिताभ बच्चन। वो आवाज जिसमें गंभीरता भी है, अपनापन भी है और ऐसा असर कि दो लाइनें सुनकर ही पहचान हो जाए। लेकिन इसी आवाज को लेकर दशकों से बात कही जाती थी। क्या सचमुच ऑल इंडिया रेडियो ने अमिताभ बच्चन की आवाज को रिजेक्ट किया था? सुनने में अजीब लगता है ना। जिस आवाज को आज करोड़ों लोग सुनना चाहते हैं, क्या कभी वही आवाज किसी चयन प्रक्रिया में पसंद नहीं आई? तो चलिए बताते हैं इसकी सच्चाई। दरअसल अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में अमिताभ बच्चन ने रेडियो में काम पाने की कोशिश की थी। उस समय वे नौकरी की तलाश में थे और आवाज के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन चयन नहीं हो पाया था। आज तक किसी बात की आधिकारिक फाइलें या रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है कि उन्हें किस वजह से नहीं चुना गया, लेकिन इतना जरूर माना जाता है कि रेडियो में उन्हें अवसर नहीं मिला। अब जरा किस्मत का खेल देखिए, जिस आवाज को उस समय जगह नहीं मिली, उसी आवाज ने आगे चलकर फिल्मों में ऐसा जादू किया कि हर संवाद इतिहास बन गया। जैसे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, या फिर देवियों और सज्जनों। इन संवादों की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं थी, आवाज में थी। कई बार जिंदगी भी फिल्म जैसी होती है, जहां एक बंद दरवाजा आपको उस रास्ते पर ले जाता है जो आपकी असली मंजिल बन जाता है। तो इस अफवाह का फैसला सच्चाई के काफी करीब था। फिलहाल बढ़ेंगे दूसरे अफवाह की ओर, पर सुनेंगे हमारा अगला गाना भी।

0: तो मेरा सवाल आपसे बहुत साफ था कि अगर आपको सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले अपने पसंदीदा फिल्मी स्टार से, तो वो कौन सा सवाल होगा? फोन लाइंस खुली हुई है, जवाब के इंतजार में आपकी अपनी दोस्त पापिया बैठी है यहाँ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अब इस छोटे से ब्रेक के बाद चलते हैं दूसरे अफवाह की ओर। बात करते हैं भारतीय सिनेमा की उस फिल्म की जिसके संवाद आज भी लोगों को याद है, जिसका किरदार आज भी जिंदा है और जिसके हर दृश्य पर तालियां बजती हैं। जी हाँ, शोले। लेकिन शोले को लेकर एक अफवाह बरसों तक चली रही। क्या जय का किरदार अमिताभ बच्चन से पहले किसी और अभिनेता को मिलने वाला था? सुनने में महज गपशप लगती है, लेकिन इस बार कहानी दिलचस्प है। किसी भी बड़ी फिल्म की तरह शोले की कास्टिंग भी एक दिन में तय नहीं हुई थी। निर्माता और निर्देशक कई नामों पर विचार कर रहे थे, कुछ कलाकारों से बातें हुई, कुछ नाम सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रहे और कुछ ने अलग अलग वजहों से फिल्म नहीं की। इसी दौरान अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया। उस समय वे संघर्ष कर रहे थे, उनकी कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली थी, लेकिन पटकथा लेखक सलीम जावेद को उन पर भरोसा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जय के किरदार में वही गहराई ला सकते हैं, बाकी तो इतिहास है। कम बोलने वाला, गंभीर, दोस्ती के लिए जान देने वाला जय अगर कोई दूसरा कलाकार निभाता तो शायद किरदार अच्छा नहीं बन पाता। लेकिन क्या उतना अमर बन पाता, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। तो क्या अफवाह सच थी? हाँ, काफी हद तक सच थी, क्योंकि कास्टिंग के शुरुआती दौर में दूसरे नामों पर चर्चा तो हुई थी, लेकिन आखिरकार अमिताभ बच्चन ही किरदार के लिए चुने गए। और कभी कभी ये एक सही फैसला पूरे सिनेमा का इतिहास भी बदल देता है। क्यों, है ना?

आगे बढ़ते हुए अगला गीत सुन लेते हैं और मेरा सवाल आपसे वही जारी रहेगा कि अगर आपको मौका मिले एक सवाल पूछने का, तो आप अपने पसंदीदा फिल्मी जो कलाकार है उनसे कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे? बस बहुत इजी सा सवाल है, फ़ोन लाइंस खुली हुई है, तो फटाफट कॉल कीजिए, बताइए हमें, साथ ही साथ गानों का रिक्वेस्ट तो हम ले ही रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए शमिता फिल्म से सुन लेंगे कालिसा मोंटेरो की आवाज़ में हमारा अगला गीत और आगे बढ़ेंगे उसके बाद तीसरे अफवाह की ओर।

तो चलिए अब सीधे बढ़ते हैं तीसरी अफवाह के बारे में जान लेते हैं। अब जिस फिल्म के बारे में बात होने जा रही है वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास है। उसके संवाद, उसका संगीत, उसकी शायरी सब कुछ समय से आगे लगता है। नाम है पाकीज़ा। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी सबसे मशहूर बात क्या है पता है? क्या सचमुच पाकीज़ा बनाने में लगभग 14 साल लग गए थे या फिर ये बस एक फिल्मी कहानी है? इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, आज के दौर में जहां फिल्में 1-2 साल में बन जाती हैं, क्या कोई फिल्म सचमुच 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बन सकती है? यही जानेंगे पर एक छोटे से संगीत विराम के बाद। चलिए सुन लेते हैं जिगर सरैया और प्रिया सरैया की आवाज में।

अभी इस गाने से पहले दोस्तों आपसे एक सवाल था कि छोड़ा था कि क्या सचमुच पाकिज़ा बनने में करीब 14 साल लग गए थे। अगर आज किसी निर्माता से कह दीजिए कि आपकी फिल्म 10 साल बाद रिलीज होगी तो शायद वो हंस पड़े, क्योंकि आज की फिल्म इंडस्ट्री में समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब एक फिल्म सिर्फ पैसों से नहीं भावनाओं से बनती थी, और पाकिज़ा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फिल्म की शुरुआत हुई थी 60 के दशक की शुरुआत में। निर्देशक थे कमाल अमरोही और मुख्य भूमिका में थी उनकी पत्नी मीना कुमारी। शूटिंग शुरू हुई, शानदार सेट बने, गाने रिकॉर्ड हुए, लेकिन फिर निजी रिश्तों में आई दूरियों ने फिल्म की रफ्तार रोक दी। कई साल तक कैमरे खामोश रहे। लोगों ने मान लिया कि अब ये फिल्म कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन कहते हैं कुछ कहानियां अपना मुकम्मल अंजाम खुद लिखती हैं। वक्त बदला, दोनों फिर फिल्म पूरी करने के लिए साथ आए। मीना कुमारी तब पहले जैसी स्वस्थ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने किरदार को अधूरा नहीं छोड़ा। आखिरकार 1972 में फिल्म रिलीज हुई, यानी शुरुआत से लेकर रिलीज तक लगभग 14 साल का सफर। इसलिए ये अफवाह नहीं, पूरी तरह सच्चाई, और शायद इसीलिए पाकिज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं भारतीय सिनेमा की सबसे भावनात्मक यात्राओं में से एक मानी जाती है। कई बार मंजिल देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो इतिहास बन जाती है। ऐसे में ही मेरा सवाल आपसे कायम है कि भाई, अगर आपको मौका मिले एक सवाल पूछने का अपने फेवरेट फिल्म आर्टिस्ट से, फिल्म सेलिब्रिटी से, तो वो सवाल क्या होगा? कॉल का इंतजार है, और फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं अगला गीत।

चलिए अब दोस्तों अगली अफवाह की बात करते हैं। चुपके चुपके क्या सचमुच बाजीगर को कई बड़े सितारों ने ठुकरा दिया था? अगर आज कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप? विलेन जैसा हीरो जो फिल्म की शुरुआत में ही बता देता है कि उसके इरादे नेक नहीं है, क्या 90 के दशक में ऐसा किरदार कोई बड़ा स्टार कह सकता है? शायद आपका जवाब हो नहीं। और यही वजह है कि सालों से एक बात सुनने को मिलती है, बाजीगर पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने नकारात्मक किरदार होने की वजह से मना कर दिया। तो क्या ये सिर्फ एक फिल्मी अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? दरअसल जब अब्बास मस्तान इस फिल्म की तैयारी कर रहे थे तब उस दौर के कुछ बड़े सितारों से बातचीत हुई। कहा जाता है कि नायक का किरदार पारंपरिक हीरो जैसा नहीं था, कहानी में वो गलत रास्ता चुनता है और यही बात कई कलाकारों को जोखिम भरी लगी। आखिरकार ये फिल्म पहुंची शाहरुख खान के पास, वो समय नए थे और शायद इसी वजह से उन्होंने वो जोखिम उठा भी लिया जिसे दूसरे लोग लेने से हिचक रहे थे। फिल्म रिलीज हुई और बाकी इतिहास है। दर्शकों ने पहली बार देखा कि नकारात्मक किरदार भी हीरो बन सकता है, यानी ये बात काफी हद तक सच्चाई है। और इससे एक बात भी साबित होती है, कभी कभी करियर का सबसे बड़ा दाव सबसे बड़ी जीत भी बन जाता है और ऐसे जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जोखिम उठाने वाले ही अक्सर नई कहानी लिखते हैं। तो इसी बात पर सुनते हैं अगला गाना। जी हाँ, बैक टू बैक दो गाने, चलिए सुन लेते हैं। अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाज़ में फिल्म वजीर से अतरंगी यारी और मोहित चौहान की आवाज़ में जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। जाता है ना आज के थीम के साथ, तो चलिए सुन लेते हैं।

नहीं, ये जो अल्फाज है वही तो कभी कभी बर्बाद कर देते हैं हमें, इसीलिए तो अफवाहें फैलती है। अब चलिए अगला सवाल पूछते हैं। क्या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का अंत पहले कुछ और था? पता है इसका इस सवाल का जवाब? अगर आज कोई पूछे कि बॉलीवुड की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में कौन सी फिल्म सबसे पहले याद आती है, तो शायद जवाब यही होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा जादू क्या था? उसका अंत, जहां हीरो लड़की को भगाकर नहीं ले जाता बल्कि उसके पिता की स्वीकृति का इंतजार करता है। लेकिन सालों से ये चर्चा होती रही कि फिल्म का क्लाइमैक्स पहले अलग लिखा गया था, सच्चाई क्या है? दरअसल फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते समय कई तरह के विचार आते हैं, लेखक और निर्देशक अलग अलग संभावनाओं पर चर्चा करते हैं, ऐसा इस फिल्म में भी हुआ। लेकिन कभी कोई आधिकारिक स्क्रिप्ट सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो सके कि कोई दूसरा अंत तय हो चुका था। यानी चर्चाएं जरूर हुई होंगी, लेकिन ये कहना कि फिल्म का अंत पूरी तरह बदल दिया गया, इसका कोई पक्का प्रमाण तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये बात ज्यादा अफवाह है, सच्चाई कम है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब आखिरी दृश्य आता है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो हर बार वही एहसास लौट आता है। फिलहाल हमारे इस एहसास को, हमारे इस कश्मकश को आगे बढ़ाते हैं। कुछ संवाद करने की कोशिश आपसे हो रही है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं लेकिन कट भी जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। पर मैं वापस सवाल आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको मौका मिले एक सवाल पूछने का अपने फेवरेट फिल्म स्टार से, तो वो सवाल क्या होगा? क्योंकि भाई कुछ संवाद होते हैं, कभी पुराने नहीं होते, बिल्कुल उन गीतों की तरह जो हर पीढ़ी गुनगुनाती है। तो फिलहाल हम भी गुनगुनाते हैं हमारा अगला गीत जो है शाश्वत सचदेव की आवाज़ में।

0: cute.
1: अब चलिए बात करते हैं उस शख्स की जिसके बारे में जितनी कहानियां सुनी उतनी कम लगती है। नाम किशोर कुमार। कोई कहता वो रिकॉर्डिंग छोड़कर चले जाते थे, कोई कहता वो पेड़ों से बात करते थे, और किसी का दावा कि रिकॉर्डिंग के दौरान जानबूझकर शरारतें किया करते थे। तो क्या ये सब सच है? अगर आपने उनके साथ काम करने वाले लोगों का इंटरव्यू पढ़ा या सुना हो तो एक बात बार बार सामने आती है, किशोर कुमार बेहद मस्त मौला इंसान थे। उन्हें औपचारिकता पसंद नहीं थी, मूड अच्छा हुआ तो रिकॉर्डिंग में ऐसा कमाल कर देते कि एक ही टेक ओके हो जाता, और अगर किसी ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया तो अपनी नाराजगी भी बड़े अनोखे अंदाज में जताते थे। हाँ, शरारतें उनकी पहचान थी, लेकिन एक और सच भी था, माइक के सामने आते ही वो पूरी तरह प्रोफेशनल हो जाते थे। इसलिए उनके साथ काम करने वाले संगीतकार कहते कि किशोर दा जितने मजाकिया थे उतने ही गंभीर कलाकार भी थे। तो ये अफवाह सच्चाई है, लेकिन आधी नहीं, पूरी तस्वीर के साथ, क्योंकि कलाकार को सिर्फ उसकी शरारतों से नहीं उसके काम से याद रखा जाता है, और किशोर कुमार अपने काम से अमर है। एक मुस्कान, एक शरारत और एक ऐसी आवाज जो कभी पुरानी नहीं होती। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने
2: वनो सेवन एफ एम रेनबो पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं छायालोक के अंतर्गत जाने अनजाने, और आज की महफिल सजी है उन कस्सों के नाम जिन पर बरसों से यकीन भी किया गया, बहस भी हुई और कई बार बिना सच्चाई जाने उन्हें आगे भी बढ़ा दिया गया। अभी तक हमने जाना कि कुछ अफवाहें सच निकली, कुछ आधी अधूरी, लेकिन अब जिस फिल्म की बात होने जा रही है उसका नाम लेते ही भव्यता, शाही अंदाज और भुलाए न भूलने वाले दृश्य आंखों के सामने तैरने लगते हैं। पर उस ओर जाने से पहले हम बात कर लेंगे हमारे इन लिसनर से। जी हाँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। चलिए देखते हैं कौन है। हेलो किसी वजह से लाइन वापस कट चुकी है, कोई बात नहीं, हम वापस से इंतजार कर लेंगे उनका और बात करते हैं। चलिए जिस के बारे में हम बात करने वाले थे अगली फिल्म के बारे में, यानी कि मुगल-ए-आज़म की बात अगर करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो है उसकी सेट की बात। क्या सचमुच मुगल-ए-आज़म की शीश महल में असली बेल्जियम शीशे लगाए गए थे? जब भी इस फिल्म का जिक्र होता है एक दृश्य सबसे पहले याद आता है, प्यार किया तो डरना क्या, चारों ओर चमकते अनगिनत आईने, रोशनी की ऐसी बारिश कि लगता है जैसे पूरा महल सितारों से भर गया हो। लेकिन वर्षों से लोग कहते हैं आए हैं कि उस सेट में साधारण शीशे नहीं बल्कि बेल्जियम से मंगवाए गए विशेष शीशों का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये सच है? जी हाँ, काफी हद तक। उस दौर में निर्देशक के आसिफ किसी तरह का समझौता नहीं करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सेट को जितना भव्य सोचा गया था उसे वैसा ही बनाया गया। शीश महल के निर्माण में विशेष गुणवत्ता वाले शीशों का इस्तेमाल हुआ जिनके बारे में लंबे समय से यही माना जाता है कि वे बेल्जियम से मंगवाए गए थे। इतना ही नहीं, उस समय की तकनीक के हिसाब से उस सेट पर शूटिंग करना भी आसान नहीं था। इतनी अधिक

परावर्तित रोशनी कैमरों के लिए चुनौती बन जाती थी। सिनेमाटोग्राफर को अलग अलग प्रयोग करने पड़े, तब जाकर वो दृश्य तैयार हुआ। आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत फिल्माए गए गीतों में गिना जाता है, तो ये सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे भव्य सेटों में से एक की कहानी है। कई बार लोग कहते हैं पुराने जमाने में तकनीक नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि तकनीक कम थी, जुनून ज्यादा था। तो कुछ फिल्में देखी नहीं जाती, महसूस की जाती, और कुछ गीत समय से भी बड़े हो जाते। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

तो चलिए बढ़ते हैं अगले अफवाह की ओर, जो है फिल्म मदर इंडिया से। फिल्मी दुनिया की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे लिखी जाती है, और ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिने जाने वाली मदर इंडिया से। सालों से एक बात सुनने को मिलती है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दृश्य फिल्माया जा रहा था, सर पर आग लगनी थी, लेकिन अचानक आग बेकाबू हो गई और फिल्म की नायिका उस आग के बीच फंस गई। तभी फिल्म के नायक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाया। कहते हैं यहीं से शुरू हुई थी एक खूबसूरत प्रेम कहानी। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ फिल्मी कहानी है या फिर इसके पीछे सच्चाई भी है? दरअसल इस घटना का जिक्र कल कई विश्वसनीय स्रोतों और फिल्म इतिहासकारों ने किया है। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक दृश्य में सचमुच आग लगी और हालात कुछ देर के लिए नियंत्रण से बाहर हो गया। उस समय सुनील दत्त ने बिना देर किए आग के बीच जाकर नरगिस को सुरक्षित बाहर निकाला। कहा जाता है इस घटना के बाद दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ी और कुछ समय बाद दोनों ने विवाह भी कर लिया। यानी ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं, पूरी तरह सच्चाई है। तो सिर्फ उसकी कहानी की कहानी ही नहीं, उसके पीछे जन्मी एक असली प्रेम कहानी भी याद आ जाती है जब भी इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो कभी कभी फिल्म का सबसे खूबसूरत दृश्य कैमरे में नहीं बल्कि जिंदगी में रिकॉर्ड होता है, क्यों, है ना? फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं हमारा अगला गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म हैदर से।

वैसे जो भी बोलिए, हैदर फिल्म का ये गाना काफी खूबसूरत है, क्योंकि इतनी खूबसूरती से इसमें कहानी कही गई है तो कि क्या ही कहे। बहरहाल ऐसे ही किसी गानों के ऊपर किसी और दिन चर्चा करेंगे जिसमें गानों के थ्रू कहानियां कही गई हैं। फिलहाल अफवाहों की बातें हो रही हैं आज, तो अब चलिए अगला सवाल पूछ ही लेती हूँ कि क्या सचमुच कई सुपरहिट फिल्मों को बड़े बड़े सितारों ने ठुकरा दिया था। जब कोई फिल्म सुपरहिट हो जाती है तो उसके बाद अक्सर एक खबर सुनाई देती है, ये फिल्म पहले किसी अभिनेता को ऑफर हुई थी, फला अभिनेता को ऑफर हुई थी, लेकिन क्या हर बार ये सिर्फ प्रचार होता है? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है, कभी कलाकार डेट्स की वजह से मना कर देता है, कभी कहानी पर भरोसा नहीं होता, कभी किरदार छोटा लगता है और कभी निर्माता किसी और दिशा में चले जाते हैं। बाद में वही फिल्म किसी दूसरे कलाकार तक पहुंचती है और वही उसके करियर की सबसे बड़ी पहचान हो जाती है। ऐसी मिसालें हिंदी सिनेमा में बहुत है, जंजीर, बाजीगर, डर, लगान, मुन्ना भाई MBBS जैसी कई फिल्मों के बारे में अलग अलग समय पर ऐसी बातें सामने आई है कि शुरुआती दौर में इनके लिए दूसरे कलाकारों से भी संपर्क किया गया। इसका मतलब क्या है? सिर्फ इतना कि फिल्में सिर्फ किस्मत से नहीं, सही समय और सही कलाकार के मेल से बनती है। तो ये अफवाह पूरी तरह सच है और शायद इसी वजह से कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बात अक्सर कही जाती है कि जो किरदार आपके हिस्से में लिखा है वो देर से सही लेकिन आपको मिल जरूर जाएगा। जिंदगी भी कभी कभी बिल्कुल फिल्मों जैसी लगती है, एक फैसला और पूरी कहानी बदल जाती है। बहरहाल इस बारे में बातें नहीं करेंगे और सुन लेंगे आगे अगला गाना, तुषार जोशी की आवाज में मुसाफिर, और फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है जग्गा जासूस।

अब चलिए थोड़े से डिफरेंट से ट्रैक में जाते हैं, जहां अंधेरा है, खामोशी है और डर भी। क्या हॉरर फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई रहस्यमय घटना जरूर होती है? आपने भी ऐसी खबरें पढ़ी होंगी, शूटिंग के दौरान अचानक लाइट चली गई, कैमरा अपने आप बंद हो गया, किसी कलाकार ने अजीब आवाजें सुनी, या सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। सवाल है, क्या सचमुच ऐसा होता है या फिर ये फिल्म के प्रचार का हिस्सा होता है? पता है सच्चाई क्या है? इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक सच्चाई जरूर होती है। किसी भी फिल्म की शूटिंग महीनों तक चलती है, कई बार रात में सुनसान जगहों पर, पुरानी इमारतों में या जंगलों के बीच। ऐसे माहौल में छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी भी लोगों को असामान्य लगती है। थकान, तनाव, लंबे समय काम करना, ये जब इंसान के मन पर असर डालता है तो हाँ, कुछ कलाकारों को अपने अनुभव साझा तो किए हैं, लेकिन आज तक ऐसी किसी घटना का वैज्ञानिक या प्रमाणित आधार सामने नहीं आया है। यानी कि हॉरर फिल्म के साथ जुड़ी डरावनी कहानी जरूरी नहीं कि सच हो। कई बार हमारा अपना मन सबसे बड़ी कहानीकार बन जाता है, और शायद यही हॉरर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी होती है। डर पहले स्क्रीन पर पैदा होता है, फिर हमारे दिमाग में। डर की भी अपनी एक धुन होती है, और संगीत हर एहसास को और गहरा बना देता है। तो आइए सुनते हैं हमारा अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म गुंडे से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जाने अनजाने।
1: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया लोक, और छाया लोक के अंतर्गत आज है जाने अनजाने। दोस्तों, आज की महफिल में हम उन किस्सों की परतें खोल रहे हैं जो बरसों से फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे। कुछ कहानियां ऐसी जिन पर यकीन करना आसान और कुछ

ऐसी जिनकी सच्चाई जानकर हैरानी होती है। अब तक हमने सितारों, फिल्मों और शूटिंग से जुड़ी कई चर्चित बातों की पड़ताल की। अब बढ़ते हैं एक और ऐसे विषय की ओर जो लगभग हर संगीत प्रेमी को रोमांचित करता है। क्या कुछ सुपरहिट गाने पहले किसी दूसरी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुए थे? जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपका पसंदीदा गीत जिस फिल्म से आप उसे जोड़ते हैं, हो सकता है कि शुरुआत में उसके लिए बना ही ना हो। अजीब लगता है ना, लेकिन फिल्म संगीत की दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है। संगीतकार महीनों पहले धुन तैयार कर लेते हैं, गीतकार उस पर शब्द लिखते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, लेकिन तभी ये फिल्म की कहानी बदल जाती है। निर्देशक को लगता है कि अब ये गीत कहानी में फिट नहीं बैठता। कभी निर्माता बदल जाता है तो कभी पूरी की पूरी फिल्म ही बदल जाती है। ऐसे में इतनी मेहनत से तैयार हुआ गीत भला क्यों बर्बाद किया जाए? फिर वही धुन किसी दूसरी फिल्म तक पहुंचती है, वहां नया दृश्य मिलता है, नई परिस्थिति मिलती है और देखते ही देखते वही गीत इतिहास भी बन जाता है। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां धुने या रिकॉर्ड किए गए गीत बाद में दूसरी फिल्मों में इस्तेमाल हुए। कई बार शब्द बदले, कई बार ऑर्केस्ट्रा बदला गया, लेकिन धुन वही रही। तो ये कोई फिल्मी गपशप नहीं बल्कि सच्चाई है, और शायद यही संगीत की सबसे खूबसूरत बात भी। अच्छी धुन अपना रास्ता खुद बना ही लेती है, क्योंकि कहते हैं अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस हर दौर में नए दिलों तक पहुंचता है। तो इसी बात पर सुनते हैं हमारा अगला गीत। और ये गीत स्पेशली रिक्वेस्ट किया था पारस पंडित जी ने चुचुरा हुगली से। तो चलिए सुन लेते हैं उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गीत। फिलहाल फोन लाइंस में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फोन कॉल्स हम उठा नहीं पा रहे, पर रिक्वेस्ट किया हुआ गाना तो सुनना ही पड़ेगा, है ना?

चलिए दोस्तों, अब ऐसी बात करते हैं जो लगभग हर फिल्म प्रेमी ने कभी ना कभी सुनी होगी। क्या फिल्मों की पोस्टर देखकर ही उनकी किस्मत तय हो जाती है? कई लोग कहते हैं अगर पोस्टर दमदार है तो आधी लड़ाई वही जीत ली जाती है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? दरअसल एक समय था जब फिल्म का पोस्टर ही उसका सबसे बड़ा प्रचार होता था। न सोशल मीडिया, न इंटरनेट, न मोबाइल, बस शहर की दीवारों पर लगा एक पोस्टर, और उसी से तय होता था कि दर्शक टिकट खिड़की तक जाएंगे या नहीं। यही वजह थी कि पोस्टर बनाने वाले कलाकारों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी जितनी निर्देशक या अभिनेता को। लेकिन क्या शानदार पोस्टर हमेशा फिल्म को सुपरहिट बना देता है? नहीं, इतिहास गवाह है, कई फिल्म के पोस्टर शानदार थे लेकिन फिल्म नहीं चली। और कई ऐसे फिल्में भी थी जिनका प्रचार बहुत सीमित था लेकिन रिलीज के बाद दर्शकों ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। यानी पोस्टर पहली मुलाकात जरूर है लेकिन फैसला हमेशा दर्शक करता है। इसलिए ये बात आधी सच्चाई है और आधा भ्रम भी है। पहली नजर, पहला एहसास और पहली मुलाकात, कई कहानियां यहीं से शुरू होती है। सुनते हैं इसी बात पर अगला गीत।

अब एक और सवाल, भाई सवालों का सिलसिला आज ख़त्म नहीं हुआ, जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है कि अभिनेता अपने सारे स्टंट खुद करते हैं। जब हम किसी हीरो को ऊंची इमारत से छलांग लगाते, तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच दौड़ते या आग के बीच लड़ते हुए देखते हैं तो तालियां अपने आप बजने लगती है और तभी कोई कह देता है ये सब उन्होंने खुद किया। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? सच्चाई ये है कि कुछ कलाकार सचमुच कई स्टंट खुद करते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में स्टंट डबल और एक्शन टीम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। खतरनाक दृश्यों के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर वो दृश्य पूरा करते हैं। हाँ, कई सितारे कुछ स्टंट खुद करना पसंद करते हैं, लेकिन हर स्टंट नहीं, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरी फिल्म को महीनों पीछे धकेल देती है। इसलिए हर अभिनेता अपने सारे स्टंट खुद करता है, ये बात अफवाह है। सच्चाई ये है कि फिल्मों के पीछे सैकड़ों ऐसे कलाकार काम करते हैं जिनका चेहरा हम कभी नहीं देख पाते, लेकिन उनकी वजह से बड़े पर्दे का जादू पूरा होता है। हर चमकते सितारे के पीछे कुछ अनदेखे सितारे भी होते हैं। आइए उन्हीं मेहनतकश कलाकारों को सलाम करते हुए सुनते हैं हमारा अगला गीत भी।

तो दोस्तों एक लाल इश्क, जी हाँ, रामलीला को लेकर जब रिलीज होने से पहले काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आई थी। तो यहाँ पे एक और भी सवाल आता है कि क्या बॉलीवुड में हर फिल्म के पीछे कोई ना कोई विवाद ज़रूर होता है। कई लोग कहते हैं अगर फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में नहीं आई तो शायद वो बड़ी फिल्म है ही नहीं। कहीं कहानी पर सवाल, कहीं गानों पर आपत्ति, कहीं किसी संवाद पर बहस, तो कहीं किसी किरदार को लेकर विरोध। लेकिन क्या हर सफल फिल्म के साथ ऐसा हुआ है? तो जवाब होगा नहीं। हाँ, कुछ फिल्मों के साथ विवाद जुड़े और कई बार उन विवादों ने फिल्म को अतिरिक्त चर्चा भी दिलाई, लेकिन उतनी ही बड़ी संख्या में फिल्में भी हैं जो बिना किसी शोर शराबे के आई और सीधे दर्शकों के दिलों में जगह बना गई। असल में किसी फिल्म की असली ताकत उसकी कहानी होती है। अगर दर्शक को छू जाए तो उसे प्रचार की जरूरत कम पड़ती है, और अगर कहानी कमजोर हो तो विवाद भी उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाते। इसलिए यह बात कि हर फिल्म बड़ी विवादों की वजह से ही चलती है सिर्फ एक अफवाह है। तो दोस्तों आज की शाम हमने सिर्फ फिल्मों की बातें नहीं की, हमने उन कहानियों को समझने की कोशिश भी की जो पर्दे के पीछे जन्म लेती है, कभी किसी संघर्ष से, कभी किसी संयोग से, और कभी सिर्फ लोगों की कल्पनाओं से। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे अरे जानते हो उस फिल्म के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है, तो उसे तुरंत सच मत मानिए। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा खोजिए, क्योंकि फिल्मों की दुनिया में हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। इसी उम्मीद के साथ आज की ये फिल्मी अफवाह या सच्चाई आपको होपफुली पसंद आया होगा, और जाने अनजाने का आज का जो अंक है यही समाप्त करती हूँ। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, वापस मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और समय, कुछ और बातों और गीतों के साथ छाया लोक में, और कुछ एक नई थीम, नई बातें और सिनेमा की दुनिया के कुछ जाने अनजाने सुने अनसुने किस्से के साथ। तब तक फिल्में देखिए, गीत सुनिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। और इसी आशा के साथ कि जल्दी मुलाकात होगी, मैं पापिया कहती हूँ आप सभी से शुभरात्रि, शबा खैर, और मिलने का वादा करते हुए वापस कहती हूँ नमस्कार। और फिलहाल के लिए जाते जाते आपके लिए अमित कलम के आवाज में मन कस्तूरी छोड़े जा रही हूँ। बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है ये, और जो गाना है वो है फिल्म मसान से। तो चलिए मसान फिल्म का ये गाना एंजॉय करते हुए गुड नाइट करते हैं। थोड़ी देर में वापस 107 FM रेनबो पर सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धीरे कट तक धीरे धी